0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पद
1: काय ग उलटी गिनती का सुरू आहे तुझी?
0: अंक पाढे कुठलंही पाठांतर हे सगळे व्यायाम आहेत.
1: ए हॅलो, व्यायामासाठी जॉगिंग, वॉकिंग, जिम किती तरी पर्याय आहेत.
0: हो पण मेंदूचं काय, त्याचेही व्यायाम करायला हवेत.
1: अच्छा, म्हणजे ब्रेन ऍक्टिव्हिटीज, बरं त्या कशा करायच्या?
0: रेडिओ ऐक ना, स्मृतीवर्धन.
1: अलकनंदा पाध्ये यांच्या मुलाखतीचा दुसरा भाग अवश्य ऐका सोमवारी 27 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजता वनिता मंडळात अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR ऍप आणि वेव्स OTT प्लॅटफॉर्मवरही. स्मृतीवर्धन.
2: वो खेल और खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्सर बड़ी सुर्खियों के पीछे जगह बनानी पड़ती थी. इस बार मंच उनके सामने है. अब देखना ये है कि कौन इस मौके को दोनों हाथों से थामकर सुर्खियां अपने नाम कर लेता है. तो आइए जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दूसरे दिन कौन कौन से खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोर ली है.
3: सबसे पहले बात पैरा पावर लिफ्टिंग की. पैरा पावर लिफ्टिंग में खिलाड़ी सिर्फ वजन नहीं उठाते, वो उन सीमाओं को उठाकर एक तरफ रख देते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर उनके सामने खड़ा कर देती है. भारत में पैरा खेलों ने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है और शायद इस मंच पर एक और जीत किसी को ये यकीन

0: ला दे कि उसकी ताकत उसकी कमजोरी से कहीं बड़ी है। इसका उदाहरण स्थापित किया भारत के झंडू कुमार ने। पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग में 72 किलोग्राम के भार वर्ग वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके चलते 130.9 अंक हासिल किए। इसके साथ ही झंडू कुमार को कांस्य पदक हाथ लगा और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत का खाता खुला। ग्लासगो जाने से पहले ही आकाशवाणी से हुई खास बातचीत में झंडू कुमार ने बताया था कि उनके हौसले बुलंद हैं और वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार।
1: पिछली बार भी हमने कोशिश किए थे, दिल से कोशिश किए थे कि अच्छा ही करेंगे। एशिया चैंपियन भी अच्छा किए और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किए, इस बार कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करेंगे।
2: इतना वजन उठाने के टारगेट रखा वजन उठाने का?
1: सर देखिए, अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्म अप एरिया में जो पता लगता है कि हम कितना, मतलब यहाँ तो 210-220 कर रहे हैं, मगर वहाँ मौसम के हिसाब से थोड़ा देखा जाता है वहाँ पे।
0: और झंडू कुमार ने कर दिखाया भी। पैरा पावर लिफ्टर से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद हम सभी को थी। नई दिल्ली में हुई सेंड ऑफ सेरेमनी के दौरान ही कोच राजेंद्र सिंह रेहलू ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी।
3: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है। हम कोशिश है हमारी कि इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा। मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
0: ये पदक पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी में आया। इसी कैटेगरी में भारत के सुधीर ने भी हिस्सा लिया और 91 किलो के सुधीर ने 183 किलो का भार उठाया और 114.1 अंक हासिल किए। सुधीर को पदक भले ही ना मिला हो, लेकिन जब जब एक पैरा एथलीट शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंच पर पहुंच भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो समाज में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
4: A quintessential example of this was given on Friday by Ashok in men's para power lifting. Ashok registered his personal best by lifting an impressive 200 kgs and earning 143.8 points. Alas, he finished fourth and missed out on a podium finish.
0: In the same event, Paramjeet Kumar lifted 176 kgs and finished 7th.
4: वहीं महिलाओं में उम्मीदें जसप्रीत कौर और सुमन देवी से थी।
5: मैं जसप्रीत हूँ, पैरा पावर लिफ्टर। अभी मैंने रिसेंट हमारा एशियन चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ मेरे ब्रॉन्ज मेडल लिया और उसके बाद अभी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ी है, इसे मुझे उम्मीद है कि मैं मेडल लेके आऊँ।
0: हाउएवर, इट वॉज अगेन अ स्टोरी ऑफ सो नियर येट सो फार। जसप्रीत कौर ने 100 किलो वजन उठाया, लेकिन उसके बावजूद वो चौथे स्थान पर रही और पदक से चूक गई। उनके बाद सुमन देवी ने 103 किलोग्राम भार उठाने के दो प्रयास किए और मेडल पर निशाना लगाना चाहा, लेकिन उनके दोनों ही प्रयास असफल रहे और उन्हें छठे पायदान से संतोष करना पड़ा।
4: ऐसी ही कहानी रही कस्तूरी राजमणि की भी, जिन्हें 3 असफल प्रयासों के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाना पड़ा।
0: अब बात करते हैं बॉक्सिंग रिंग की, जहां पर हर एक पंच भारतीय मुक्केबाजों के हौसले, उनकी तैयारी और उनके जोश को बयां करता है। भारत के जादूमणि सिंह ने इसी का परिचय देते हुए पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेजबान टीम के आरन कलन को सर्वसम्मति से मात दी, यानी पांचों के पांचों जज का फैसला जादूमणि सिंह के हक में रहा। इसके साथ ही जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश पा लिया है। अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि क्या इस बार इतिहास रचेंगे?
4: अब बात करते हैं लॉन बॉल्स की, जहां पिछले संस्करण में भारत ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीता था। इस बार मानो हमारे एथलीट स्थान कर आए हैं कि लॉन बॉल्स की गूंज भारत की हर गली में सुनाई देनी चाहिए। पिछली बार की सफलता को देखकर लॉन बॉल्स के खेल में शुरुआत करने वाले पुतुल सोनेवाल ने शुरुआत ही इस प्रकार की है।
6: नमस्कार, मैं पुतुल सोनेवाल असम से हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है।
0: ऑन डे 1 पुतुल सोनोवाल डिफीटेड आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर ऑफ कनाडा। ही कंटिन्यूड द विनिंग वेज ऑन डे 2 एज वेल। इन फ्रंट ऑफ हिम वाज द चैलेंज ऑफ सेलिक अलेक्जेंडर ऑफ फॉकलैंड आइलैंड्स। इन द फर्स्ट सेट सोनोवाल वाज ट्रेलिंग, बट ही केम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू टाई दैट सेट एंड देन रजिस्टर्ड एन एम्फैटिक विक्ट्री इन द सेकंड सेट।
4: जैसे

0: आप जानते हैं कि 2022 में भारत की महिलाएं लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक लेकर आई थी। उस टीम का हिस्सा रही रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी ने विमेंस पेयर में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। पहले दिन माल्टा को टाई ब्रेकर में हराने के बाद दूसरे दिन इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को 2 सीधे सेटों में मात दी। इनका अगला मुकाबला टोंगा से आने वाली मिलिका नेथेन और पेरिस बेकर की जोड़ी से है।
1: पिंकी ने तो ग्लासगो जाने से पहले ही बता दिया था कि भले ही इस बार ये प्रतियोगिता पिछली बार की तरह नेचुरल ग्रास के बजाय कारपेट वाली घास पर हो रही हो, लेकिन उनका इरादा पोडियम फिनिश से कम का नहीं है।
2: हमने जो हिस्ट्री बनाई थी, क्रिएट की थी, हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरह किसी भी मेडल पे पोडियम के लिए जरूर आएंगे कि हम अपना देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी लोगों ने हमारे से एक्सपेक्टेशन रखी है, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर पाए।
0: मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा स्विमिंग के फाइनल में क्वालिफाई होकर पहुंचे रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक टॉप 3 की रेस से कुछ पीछे रह गए। उन्होंने मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में चौथे स्थान पर और वहीं उसी प्रतिस्पर्धा में अली इमाम ने 7वें स्थान पर खत्म किया और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी पदक की रेस से बाहर हो गए।
1: दूसरी तरफ पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचे, लेकिन अपनी सेमीफाइनल की रेस में उन्होंने 25.29 सेकंड का समय लिया, जिसके चलते वो 8 स्विमर्स में 7वें पायदान पर रहे। इसी प्रतिस्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के पीटर कुजिया ने 24.29 सेकंड का समय लेकर नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया। जिमनास्टिक्स में तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह पुरुषों के टीम फाइनल और इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन राउंड में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने उतरे। प्रदर्शन सराहनीय रहा, लेकिन मेडल तक का सफर तय नहीं कर पाए।
0: आज तीसरे दिन यानी शनिवार 25 जुलाई को मंच दोबारा सजेगा। आइए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।
1: 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उतरेगी भारतीय महिला टीम। 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल यानी 3 खिलाड़ी, 1 बास्केट और व्हीलचेयर पर दौड़ता पूरा मुकाबला। यहां रफ्तार भी है, टक्कर भी है और हर शॉट के साथ जीत की उम्मीद भी। भारतीय टीम में शामिल है मीनाक्षी हरिचंद्र जाधव।
3: कॉमनवेल्थ गेम ये बहुत बड़ी गेम है। जब से मैं स्पोर्ट्स में आई थी, मेरा जो भी हेल्थ इश्यू था वो 99% रिड्यूस हुआ है। मेरे भाई को लगता है कि गेम में क्या मिलता है तुमको, उससे अच्छा अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम करेगी। बट कहीं पे भी जाती हूँ, कुछ जीत के आ जाती हूँ तो वो थोड़ा गर्व से बोलता है कि ये मेरे बहन है।
1: लक्ष्मी रायप्पा रायनवर।
4: मैं इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर, मेरा फैमिली बहुत खुश हो, फैमिली बहुत सपोर्ट किया था।
1: रीना रमेश चंद्र गुप्ता।
5: मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलना शुरू किया 2019 में। इसकी जानकारी मुझे मेरे एक एक्स कलीग से पता चली थी। इट वाज लाइक कि हम एक टीम स्टार्ट कर रहे हैं पुणे में, क्या आप ज्वाइन करना पसंद करोगे। आई नेवर इमेजिन कि जो मैंने एज अ फन ज्वाइन किया था, इट विल टेक मी टू द कॉमनवेल्थ गेम्स।
1: इरेंगबाम रितु चानू।
6: इरेंगबाम रितु चानू, मैं मणिपुर से हूँ।
1: हर खिलाड़ी अपने साथ एक कहानी लेकर आया है, दर्द की, संघर्ष की और उन सीमाओं को पीछे छोड़ने की जिन्हें दुनिया ने कभी उसकी किस्मत मान लिया था।
0: इंडिया विल प्ले देयर फर्स्ट ग्रुप स्टेज मैच अगेंस्ट वेल्स एट द SEC सेंटर।
1: बॉक्सिंग में पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उतरेंगे सचिन। राउंड ऑफ 32 में उनके सामने होने वाले हैं कनाडा के कियोमा अल अहमदिया। रिंग में हर पंच के साथ सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत भी परखी जाएगी, क्योंकि यहाँ एक बार कहानी बदल सकता है और सचिन इस बात को बखूबी जानते हैं और इसीलिए डटकर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां की है।
7: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। सभी के गोल लिए आने हैं।
1: एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी लॉन बॉल्स पर। एक ऐसा खेल जहां शोर कम है, रफ्तार कम है, लेकिन हर गेंद के साथ जीत की उम्मीद धीरे धीरे अपने निशाने की ओर बढ़ती है। पहले दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पुतुल सोनुवाल मलेशिया के इज्जत जुल केपले से भिड़ेंगे और जैसा हमने बताया वुमेन पेयर्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी का सामना टोंगा से आने वाली टीम से होगा।

0: स्विमिंग पूल में भारत के लिए उतरने वाले हैं आर्यन नेहरा और दक्षिण शशि कुमार। टॉल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में ये दोनों तैराक पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतिस्पर्धा में शिरकत करते नजर आएंगे। दक्षिण हीट 3 में और आर्यन हीट 4 में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश पाने की कोशिश होगी।
1: फाइनल मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा।
2: उसके बाद नजरें होंगी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में महिलाओं पर। हवा में उड़ते शरीर, जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा खेल जिसे देखकर आंखें ठहर जाएं।
0: आज इस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरेंगी प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, प्रोशिता समानता और इशिता रिवाले।
2: चलते चलते रुख करते हैं मेडल्स टैली का। आखिरी समाचार मिलने तक भारत एकमात्र पदक के साथ 9वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में इस वक्त शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिनके पास 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 10 पदक हो चुके हैं। दूसरे पायदान पर नाइजीरिया है, जिनके 3 स्वर्ण पदक और 3 रजत मिलाकर कुल 6 पदक है। ऑन द थर्ड स्पॉट इज होस्ट स्कॉटलैंड विद 2 गोल्ड मेडल्स एंड 2 सिल्वर मेडल्स, टोटल मेडल्स 4। इंग्लैंड हैज 1 मोर, दे हैव 5 मेडल्स इन टोटल। हाउएवर दे आर प्लेस्ड एट नंबर 4 बिकॉज दे हैव 1 लेस गोल्ड मेडल दैन स्कॉटलैंड। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 नेशंस, साउथ अफ्रीका इज द ओनली वन टू ऑल्सो विन अ गोल्ड मेडल। विल इंडिया बी एबल टू क्लाइंब अप द टैली एंड गेट ऑफ द मार्क इन द गोल्ड मेडल एंड द सिल्वर मेडल कॉलम? वी विल नो सून।
0: हर दिन कोशिश जारी है। भारत के एथलीट्स 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में जज्बे और जुनून की कहानी लिख रहे हैं। हो सकता है स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में भारत को अपना नया सितारा मिल जाए।
2: आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
3: The Commonwealth Games.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
5: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
6: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
4: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
7: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल हुए।
4: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
8: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंटी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
10: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows,
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोश्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना

0: नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue. Says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Munmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Munmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill is announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, ये है मस्त मुंबई। सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र के एफएम रेनबो चैनल पर सीधा प्रसारण। हमारे डीटीएच पर भी सुन सकते हो, डीआरएम पर 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पे, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी, और 107.1 तो आपको पता ही है। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनाजा अभी 11 बजे तक। सबसे पहले मस्त मुंबई 10 बजे तक, उसके बाद 2 मिनट के आपको समाचारों के अपडेट हमेशा की तरह, और उसके बाद नमस्ते भारत।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
5: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

8:55 हो रहे हैं, सुन रहे हो 107.1 FM रेनबो मुंबई। और आज है तारीख 25 जुलाई और खास तौर पे है शनिवार। शनिवार यानी अच्छी अच्छी चीजें और क्या आज खास है वो बताने के साथ साथ आज का विषय होता है दिल का फसाना। तो सबसे पहले आज जो है कुछ मतलब बहुत ही खास सा दिन है जो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। जैसे बारिश की बात तो हम लोग कर लेते हैं क्योंकि मौसम का हाल देख ही रहे हो, कैसे हो वैसे वो भी मुझे बताओ 8657661 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृन्मयी मनाजा। FM Rainbow का WhatsApp नंबर।

साथिया का टाइटल ट्रैक सुन रहे हो और गुलजार साहब ये क्या एक हंसी के बदले जमीन दे रहे हैं, ये कहाँ चल रहे भाई? मतलब मजा ही आ जाए नहीं, एआर रहमान का म्यूजिक हो और साथ गुलजार साहब कह ही रहे कि एक हंसी के बदले मेरी जमीन ले ले आसमान ले ले। हाय, दिन की शुरुआत होना तो ऐसी होनी चाहिए, जितना कुछ बुरा होता है ना वो अचानक से कहीं धुंधला सा चला जाता है। वैसे मध्यम की बात कर रहे थे तो मध्यम यही है कि कहीं कहीं लोग बारिश हो रही है तो खुश हो रहे हैं तो कहीं नहीं हो रही है तो, लेकिन 8 बजे का जो मौसम विभाग का अपडेट जो रहता है कि हल्के हल्के बादल तो आपके रहेंगे 24 घंटे तक और मध्यम बारिश जो है मुंबई शहर और सबर्ब्स में होने की संभावना है। 30 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच आपका ज़्यादातर और कम यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान रहेगा। उसी के साथ साथ जैसे चेतन जो है हमें बिहार गया से बता रहे कि धूप निकली है तो इतना अच्छा लग रहा है, या मतलब कहीं बारिश हो रही है तो लोग खुश हो रहे हैं और वहीं अच्छा उन्होंने लिखा था एक हफ्ते से जो है मौसम सुहाना था मेरे शहर में, रोज बारिश होती थी और आज देखो सुबह से धूप निकल आई है। है ना, सबके मूड के ऊपर होता है कब कौन सी चीज अच्छी लगती है। कहीं पानी अच्छा लगता है तो कहीं ज्यादा पानी हो जाए तो भी डूबने का खतरा होता है। अब पानी की बात करूं तो यही सोच रहे हो ना कि बस बारिश की बात हो सकती है। मैं भी ना ऐसे ही सोचती थी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पानी अलग अलग तरीके से हो सकता है और अलग अलग तरीके से इंसान डूब भी सकता है। बात स्विमिंग पूल की हो सकती है या फिर और क्या हो सकता है, सोचो सोचो। वैसे आज 25 जुलाई यानी कि विश्व डूबने से बचाव दिवस, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, सोच भी नहीं सकते कि कितना होता है ये सब। मतलब हम लोग के वैसे ख्याल में आता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता और फिर यूं हालात हो जाते हैं।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours.
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: बावरों का काम ही यही है कि अपनी धुन में बस मस्त रहते हैं। मस्त मुंबई सुन रहे हो इस वक्त 107.1 FM रेनबो मुंबई पर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनजा। और बात वैसे बावरों का हाल ऐसा होता है ना, कभी कभी इंसान जानबूझ के नहीं खो जाता है। बच्चे भी तो होते हैं शरारती, वो भी कभी कभी समझ ही नहीं पाते। अभी देखिए, हाल ही में शायद आपने वो रील देखी भी होगी कि यूं फाउंटेन देखा नहीं कि बच्चे कूद पड़े बस कि कुछ मस्ती करते हैं। पानी सिर्फ समंदर में नहीं होता या सिर्फ नदियों में नहीं होता है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि जैसे ही पानी और डूबने की बात होती है तो हम लोग तो कैसे मुंबई कर तो यही सोचते हैं ना कि हाँ समझ गया ना, तो वही। लेकिन 3 लाख जाने जाती है पता है इसमें, हर घंटे 30। और पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, ग्लोबली या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सारे देशों में ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, 5 से लेकर 14 साल। आप देख रहे होंगे कभी आप स्विमिंग के लिए बच्चों को भेजते हैं या ऐसा कुछ, और वहाँ पे कोई है कि नहीं निगरानी के लिए, वो वाली भी बात होती है। कई बार समझ ही नहीं आता, नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, कुएँ, घरेलू जल भंडारण जो पात्र होते हैं यानी आपके जो स्टोरेज के वेसल्स होते हैं, या फिर जैसे कि हम अभी अभी बात कर रहे थे पूल की। यूं तो पानी बहुत मज़ेदार चीज़ है लेकिन उसके साथ जो खतरा होता है कभी कभी हम उतना नहीं समझ पाते। और ये जो 2026-25 जुलाई यानी आज का दिन खास यही है, यूनाइट टर्न द टाइड यानी कि एकजुट होकर जो है इस परिस्थिति को बदलना है। सच में मतलब सोचते ही नहीं है इस बारे में, तो जाहिर सी बात है कि जागरूकता बहुत ही कम है। तो अपने आसपास के दोस्तों को रिश्तेदारों को कभी ऐसे बातचीत में चाय पे ऐसी चर्चा चल रही हो तो एक बार ध्यान खींच लेना, क्या बोलते हो?

ये सिल्क रूट का रेशमी सा आय हाय मोहब्बत की दीवानगी में डूबना सही रहता है, लेकिन सचमुच का नहीं। सुन रहे हो इस वक्त मस्त मुंबई 107.1 FM रेनबो मुंबई पर, और साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऐप से भी अलग अलग कोने से जुड़े हो इस वक्त। और क्योंकि पूरी दुनिया में इतना ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास भी ऐसे कई दर्दनाक किस्से होंगे, लेकिन उसके बारे में नहीं बात करते। सुबह सुबह क्यों बुराई के बारे में बात करेंगे, कैसे बच सकते उसके बारे में तो सोचना चाहिए ना। मतलब ऐसा ना हो ना कि आप बोले कि मृणमयी बता तो दिया कि समस्या क्या है, आज का दिन खास क्या है, लेकिन उससे बचना कैसे है? तो एक कहानी सुनाती हूँ। जैसे थाईलैंड में पता क्या हुआ था, 2006 में 15 साल की उम्र से कम जो बच्चे थे

0: 1500 जाने जाती थी हर साल, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस चीज को मतलब करीब करीब 60% तक बदल दिया, बचा लिया बच्चों को। कैसे? छोटी छोटी चीजें, कोई एक प्रयास नहीं था, हजार छोटे छोटे प्रयास जब इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत सा एक नज़ारा देखने को मिलता है। जो यंग विक्टिम्स होते हैं, छोटे बच्चे खास तौर पे, उनको तैराकी सिखाना एक तो बहुत बड़ी बात होती है, और दूसरी चीज़ होती है जितने भी पूल्स हैं आपके सोसाइटी में हो, आपकी बिल्डिंग्स में हो, जहाँ कहीं भी आप बच्चों को भेजते हैं। अभी देखें, अभी अभी समर वेकेशन भी गया है, तो बहुत सारे लोग बच्चों को भेज देते थे कि कुछ समय तो ये लोग एंजॉय करें, अपने में रहें, और थोड़ा सा समय हमें भी मिल पाए। और कहीं वहाँ पे होते हैं सुपरवाइजर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, कोई तो है देखने के लिए, लेकिन पूरी तरह जिम्मेदारी नहीं छोड़नी है। बाड़ बंदी जो होता है, फेंसिंग होनी चाहिए कि अगर कोई डूब भी रहा हो तो वो वहाँ से बच तो पाए। और परिवारों ने पता है क्या किया, CPR सिखाया सबको। तो ये चीज़ उस देश में बहुत सही उनकी रही। और जो वॉलंटियर्स थे, स्वयं सेवक जो होते हैं ना, अपनी तरफ से हर किसी ने ये तय किया कि हम नज़र रखेंगे। तो जब कभी कोई स्विमिंग पूल में होता है या किसी भी पानी के इलाके में, बकेट्स में, बाल्टियों में भी बच्चे डूब जाते हैं, ऐसा भी होता है, एक पल के लिए नज़र हटी, दुर्घटना घटी। बस वही है, बच्चों को ना कभी तो जिंदा रखना, वही एक बहुत बड़ी जो है चुनौती हो जाती है लोगों के लिए। तो निगरानी जो है जिम्मेदारी इसकी सबने ली, तो ये बड़ी ही मज़ेदार सी बात थी जो कि उन सभी का साथ दे रहे थे। और CPR की बात क्या ही करेगी, तो सिर्फ मतलब डूबने वाली बात है नहीं, जिंदगी के अलग अलग पल पर आपको इसकी जरूरत जरूर होगी।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

क्रीचर 3D से ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में टोनी कक्कर का म्यूजिक सुन रहे हो म्यूजिकली योर्स 107.1 FM रेनबो पर।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: और FM के साथ साथ जाहिर सी बात है न्यूज ऑन AIR ऐप से आप अलग अलग जगह से जुड़े हैं, जैसे शाम है तमिलनाडु कोयम्बटोर से और पंकज हमें लिख रहे हैं कि CPR आपातकालीन जीवन सुरक्षा प्रक्रिया की जानकारी बहुत अच्छी लगी और आजकल

ये नाम काफ़ी बार सुना जाता है, और जब आप इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, देखिए इसकी जो है शिक्षा ज़रूरी है। सिर्फ डूबने वाली बात नहीं है, कई सारी जगहों पर आपने देखा होगा आजकल सब कुछ वायरल चल रहा है। कोई किसी ज्वेलरी की दुकान में एक अंकल थे, पता है, बस बैठे थे, जेवर खरीद रहे थे, अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन जो कर्मचारी वहां पे थे उन्हें पता था कि CPR कैसे देना है, तो उन्होंने उनकी जान बचा ली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, सिर्फ फर्स्ट एड पे पहले हमारे ज़माने में ना बात ख़त्म हो जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, कितना कुछ है जिससे कि आप किसी की जान बचा सकते हो। और बात वही है कि सिर्फ लाइफ जैकेट पे ही सब कुछ ख़त्म नहीं होता, सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी का जो सामान है वो भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आप सिर्फ प्यार में डूबो और किसी चीज़ में नहीं। तो अपना ख्याल रखना है, बाकी सबका आसपास भी ख्याल रखना है। आपको तो पता ही है, जब भी हाई टाइड होता है मुंबई में, तो आप लोग सब कुछ बिना सुने वहाँ पर कूद ही जाते हो, और फिर पुलिस वाले बेचारे आपको कहते रहते हैं जाओ जाओ जाओ। मेरे साथ भी हुआ ऐसा, नहीं मतलब डांट खाते हम, लेकिन ये बात सच है कि उसके बाद दोबारा मैं नहीं गई हाई टाइड में, वो गलती से चली गई थी, पता ही नहीं था। तो चेक करके जाना चाहिए, क्योंकि समंदर के पास हम लोग रहते हैं खास तौर पर, ये जो शहर है। और जैसे बाल्टियों की बात हो रही थी, वहाँ जब बच्चे डूब जाते हैं तो उसे ढका भी जा सकता है, कभी भी खुला नहीं छोड़ना। ये लोग बहुत शैतान होते हैं, पता है, इनसे नहीं बचा जा सकता, बस इनके इर्द गिर्द खुद को बदलना पड़ता है कि किस तरह इन्हें बचाया जाए, सेफ रेस्क्यू हो सके। CPR जहाँ तक जितने लोग सीख सकते हो वो ज़रूर सीखें, और घर में जहाँ जहाँ पानी की जगहें हों उन्हें भी बचा कर रखें। और ये जो जानकारी मैंने बताई, या फिर आप अलग से सही सूत्रों से पता भी करके जो सीखते हैं वो दूसरों को भी समझाएं। तो फिर क्या होता है ना, हर दिन आखिरी दिन है, यही सोच के जान कितनी कीमती होती है, बस यही सोच के जीते जाना है। क्योंकि दिल का फसाना तो तभी सुनाओगे ना जब दिल धड़केगा, जिंदा बचेगा।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आवाज की बात करें, 9:40 हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सी चीज होती है और सच में अमर होने का बहुत ही अच्छा उपाय है। यूं तो आत्मा अमर होती ही है, लेकिन इंसान अलग अलग तरीकों से लोगों के दिलों में घर करके हमेशा कब्जा करके रहना चाहता है, जैसे हम जैसे स्वार्थी लोग। लेकिन अच्छे, बहुत ही अनेक और गुणी लोग, ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ मैं। वैसे तो मराठी जितने हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि आज कौन सा खास दिन है। 25 जुलाई क्योंकि है, तो आज उनका नाम ना ऐसा नहीं हो सकता है। बाबूजी यानी कि सुधीर फड़के, उनकी जयंती आज ही के दिन। और मराठी संगीत की बात करें तो उनका नाम हमेशा आता ही है। गीत रामायण शायद आपने सुना भी होगा। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अपनी आवाज़ की वजह से इतना ज़्यादा जाने जाते हैं और दिलों में घर करके हमेशा रह जाते हैं। और इतने सारे हमारी हस्तियां हैं, इतनी कला है हमारे देश में कि कई बार जो लोग यहाँ से नहीं होते उनको पता भी नहीं होता। तो एक नया नाम मैंने आज आपको दिया। साथ ही साथ आज का दिन 1978 में पता है दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, 25 जुलाई को ही बिल्कुल। तो IVF की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। और आजकल तो ये आप बहुत ही सुनते हैं, जो जो लोग दंपति जो होते हैं समस्याओं से गुजर रहे होते हैं बच्चों को लेकर, वो इस प्रकार से भी उनका बच्चा हो सकता है। तो ये बात है आज का दिन, कई कई जानकारी, कई खास चीज़ें।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: ये गाना आप सुन रहे थे तू जानी ना जब प्रेम की गजब कहानी, अरशाद कामिल ने इसे लिखा है 107.1 म्यूजिकली योर्स पर। मस्त मुंबई कार्यक्रम में हूँ आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनजा। और सच, जिंदगी में इतना कुछ होता है जो हम नहीं जानते, और जानना जब चाहते हैं तो डर भी लगता है साथ साथ। जैसे कि आप सभी के मैसेजेस आए हुए हैं, खास तौर पे बड़े कुछ इस प्रकार के भी होते हैं, अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज, अलग अलग तरह की हस्तियां इकट्ठा हो जाती हैं वही 865-766-1071 पर 8657-66-1071। तो ये एक मैसेज है कि पिकनिक्स पे जो नहीं जाना चाहिए, ये तो ना आप ट्रॉमा, पता है, पीटीएसडी बचपन का एकदम से शुरू करवा रहे हो। कितने सारे बच्चे होंगे मेरी तरह जो कभी जा ही नहीं पाए क्योंकि माँ बाप इतना डर जाते हैं, वो भी है।

तो कोई भी चीज ना बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए पर हाँ सतर्क रहे, सावधान रहे, लेकिन हाँ बचाव के साथ साथ मस्ती इकट्ठा होनी चाहिए, वो बात तो है। और जो वाटरफॉल वाली बात आपने लिखी है वो बात भी सही है वो, लेकिन हाँ कई सारे लोग हैं, ये कुरला का मैसेज हमारा कि बच्चे खास तौर पे रील्स बनाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए कभी कभी जान जोखिम में डाल भी देते हैं और उसके बाद जब तैरना नहीं आता तो भी डूबने का खतरा होता है, तो वो बात तो सही है ही। तो एकदम एज पे ना जाए और ना ही हमेशा घर पे हाउस अरेस्ट पे रहें, क्योंकि घर में कैद होके रहेंगे तो भी पक जाएंगे। तो थोड़ा सा बाहर जाएं जब कभी आपको एक मौका मिले, लेकिन उसी के साथ साथ जिंदगी एंजॉय करें सावधानी के साथ, ताकि कह सकें कि सब कुछ फर्स्ट क्लास है ना। ऐसे तो सब बिगड़ा हुआ है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, एक नंबर।

जय हो का गाना सुन रहे थे आप, सलमान खान की फिल्म वाजिद की आवाज, साथ इरफान कमल और साजिद दानिश सबरी, साजिद वाजिद का म्यूजिक। और अब आ रहा है आपके पास के और यशिता की आवाज में हाँ मैं जितनी मर्तबा। थोड़ी ही देर में ठीक 10 बजे मैं आपको सुनाऊंगी समाचारों के 2 मिनट के अपडेट्स, और उसके बाद होगा नमस्ते भारत 11 बजे तक।

अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे के मुख्य समाचार। ये गाना था ऑल द बेस्ट का, कुमार और प्रीतम का म्यूजिक। सुन रहे हैं 107.1।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिले लोगों के सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जनता के साथ उनका रिश्ता विश्वास और सहयोग पर आधारित है और ये जुड़ाव आगे भी लगातार मजबूत होता रहेगा। सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। श्री नड्डा ने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगें रखी हैं और परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुधारों के सुझाव भी दिए हैं। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित 10 चालक दल के सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। पैरा पावर लिफ्टिंग की पुरुष हैवी वेट स्पर्धा में झंडो कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। बिहार के नालंदा के रहने वाले झंडो कुमार ने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 196 किलोग्राम का रिकॉर्ड प्रयास भी किया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके। झंडो कुमार ने पोलियो और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ समाचार समाप्त।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। सीधा प्रसारण आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव यानी के 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हो। साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऐप तो है ही, जहां कहीं भी होते हो आपके फोन में हम भी होते हैं साथ साथ। तो बस यही बात है, दिल से दिल का रिश्ता है। और ये समय हो चुका है समाचारों के उस पार नमस्ते भारत शुरू करने का। ठीक 11 बजे तक नमस्ते भारत हमेशा की तरह 107.1 FM रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मृणमयी मनाजा।

जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आज मैं पहली बार ध्यान से सुन रही हूँ. इट्स द वाइब दैट यू नीड. क्या बात है. कोई मिल गया का ये गाना सुन रहे हो. इब्राहिम नहीं मतलब वो लिरिसिस्ट हैं आप तो हैं ही इब्राहिम हमारे जो मैसेज किए जा रहे हैं. मैं सबका पढ़ती हूँ. ऐसे राजेश रोशन का म्यूजिक है ये गाना कोई मिल गया से ऋतिक रोशन के जादू के साथ. आगे बढ़ेंगे. सभी के मैसेजेस देख रही हूँ मैं. नमस्ते भारत.
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
2: नन्ही सी जान है अम्बई, नमस्ते भारत, कैसे हो? पूछ तो मैं लेती हूँ, उसके बाद आप सबके जो उत्तर होते हैं वो भी मैं पढ़ती हूँ. लेकिन कहता है ना, ये है रेडियो और हमें वैसे विषय पर भी बात करनी है. सुनो गौर से दुनिया वालों, क्योंकि आज शनिवार, तो सामाजिक विषय पर भी बात करनी है ना मेरी जान. लेकिन हाँ, कौन चार लोग हमेशा पूछते हैं ना हम लोग. बस आपने फोटो भी भेज दिया, 4 लोग हम साथ में सुन रहे हैं. बिल्कुल खेतों से आपके फोटो, सेल्फी भी मैं देख रही हूँ विजेंद्र, और बाकी के 4 भी हैं आपके साथ. बहुत बढ़िया. सबसे मजे की बात है कि एक दूसरे से जो आप मतलब हो रहे हो कि उनका आपने बोला हमारा नहीं, ऐसा नहीं है. हम लोग के लिए आप सभी उतने ही खास होते हो और कार्यक्रम आप सभी को अच्छा लग रहा है से भी हमें बहुत खुशी मिलती है. ऐसे हर एक सेकंड की जो अपडेट लिखते रहते हो ना फटाफट, वो पढ़ के भी हम आगे भी बढ़ रहे होते हैं, तो वो भी है. बिल्कुल फिरोज फैमिली एंड फ्रेंड्स, साथ जो है वैद्य ही, आपको भी बहुत बढ़िया सा गुड मॉर्निंग. शिवलक्ष्मी, शिवधा सब है, धनंजय है, दादर से बाबा है, प्रमोद हैं हमारे, महेश हैं, इतने सारे नाम हैं हमारे, प्रणव शिंदे हैं, हितेंद्र दास हैं. आप सबको अच्छा लग रहा है वो तो बढ़िया बात है, लेकिन आज के विषय पे आने दोगे? तो ऐसा है कि विषय शायद थोड़ा सा समझ ही गए होगे, क्योंकि पहला गाना टेबल नंबर 21 से मन मेरा, और उसके बाद का आपने सुना कोई मिल गया. अब इन दोनों फिल्मों में क्या कॉमन बातें, सोचते रहो और मुझे बताओ. तब तक नन्ही सी जान में एक और प्यारा सा गाना सुनती है ना?

0: Sunny FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: छोटा सा काम दिया था मैंने आपको और बिल्कुल बात सही है कि कभी कभी फिल्मों की जो कहानियां होती हैं वो हम भूल जाते हैं, गानों में रह जाते हैं, गाने बड़े प्यारे होते हैं हाय, और फिल्में भी कभी कभी इतने ट्विस्ट के साथ आती हैं ना कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते होगी, मतलब ये क्या हुआ पता ही नहीं होता क्या सोच के गए होते हो। जैसे टेबल नंबर 21 जो है राजीव खंडेलवाल की जो फिल्म थी लड़कियों के, तो वो मतलब आपको पता ही है नेशनल क्रश, तो गए थे इसी प्रकार से, और सामाजिक विषय उसमें से निकल आएगा ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। और जब अंत में क्लाइमैक्स में धूम तनाना क्लाइमैक्स आने वाला होता है ना, तो वो कभी कभी बताना भी नहीं चाहिए ताकि जो फिल्म है आप बाद में जाके अच्छे से देख सकें। हालांकि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कि सब कुछ सुनने के बाद भी देख लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है स्पॉयलर्स, ताकि चीज़ें आपको पता हो कहाँ तक आप झेल सकते हैं कहाँ तक नहीं झेल सकते हैं, वो भी रहता है ना। क्योंकि कभी कभी आप बीती जब पर्दे पे देखते हैं लोग, तो बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग विषय जो है वो काफ़ी मतलब ट्रिगरिंग हो सकते हैं, उनको दुख ज़्यादा पहुंच सकता है, हो सकता है वो सह ना सके, है ना, वो वाली बात होती है। पर इसमें इतने प्यारे गाने, जैसे गजेंद्र वर्मा की आवाज़ में सुन रहे थे पहला वाला गाना मन मेरा, और ठीक उसी के बाद अगर कोई मिल गया में आप देखो तो उसमें भी वो थोड़े से अलग हैं। और जब हम अलग होते हैं ना, तो पता नहीं क्यों बाकी की जनता को ये नहीं सह पाते लोग, और साथ ही साथ जिनके साथ खुद बुरा होता है ना, कई बार वो खुद भी दूसरों पे अपना रूप जो है झाड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अब टेबल नंबर 21 की कहानी भी वैसे ही इंटरेस्टिंग है, बहुत रोमांचक इसलिए, रोचक इसलिए, क्योंकि पहले तो आपको लगता है कि हीरो हीरोइन कितने अच्छे हैं भाई, लोग के साथ इतना बुरा हो रहा है, परेश रावल आपको एकदम विलेन के किरदार लगते हैं, और अचानक से यूं जज्बात बदलते हैं, यूं हालात बदलते हैं,
2: ये शरबती आंखें

नीरज श्रीधर, जसप्रीत जैज, सचिन गुप्ता, ये गाना सुन रहे हो आप। झूठ बोलोगे तो जान जाएगी है। लेकिन अगर टेबल पे 21 करोड़ रुपए हो, 21 करोड़, तो नियत थोड़ी सी फिसल जाती है बहुत सारे लोगों की, पता है मुझे।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गाने में अभी अभी सुन रहे थे ना कि पैसा ऐसा कैसा पैसा ऐसे वैसे कैसे बहुत कुछ बदल जाता है जब आप कोई ऐसा गेम खेलने जाते हो जिसमें एक पल में किस्मत बदलने वाली होती है। और अक्सर ऐसी चीज़ें जो हैं आंखों का धोखा, जैसे कि आप सबके जवाब भी मैं पढ़ रही हूँ, कई सारे लोगों ने लिखा है फ्रॉड, नहीं फ्रॉड की नहीं बात कर रही हूँ, फ्रॉड तो बहुत ही होता है। लेकिन आज थोड़ा सा वैसे सोच समझ के आई मैं कि सामाजिक विषय जो है, कई बार ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के साथ होता है या बड़ों के साथ नहीं होता, सबके साथ ही होता है, पर दूसरों को एक कमी का एहसास दिलाकर क्यों इतनी खुशी मिलती है कुछ लोगों को जिनके साथ खुद बुरा हुआ होता है, जो शायद घर पे भी बहुत हिंसा देख रहे होते हैं या उसके शिकार होते हैं, बाहर जाके वो दूसरों के साथ वही करते हैं, क्यों? ये जो एक साइकिल है ना, ये चलता रहता है उसके बाद, फिर ये बड़ी समस्या है। लेकिन जो भी भुक्तभोगी होता है, जो उससे गुजरता है, उसके लिए कभी कभी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर गलती से बच भी गए ना, तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं बुलिंग की बात कर रही हूँ। तो कई सारे फिल्मों में छोटी बड़ी चीज़ें आपने देखी है, बड़ी आसानी से लोग कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आपको भी पता है, जब हम स्कूल में थे, कोई एक ऐसी बात होगी, किसी प्रोफेसर ने बोली होगी, किसी टीचर ने बोली होगी, या फिर कोई सीनियर होगा, कोई दोस्त होंगे, छोटी छोटी बातें मन पे इतना गहरा छाप छोड़ जाती हैं कि वो फिर कभी जाती ही नहीं है। इतने सालों बाद भी आपके पास ही रहती है। जैसे ये भी आ रहा है सितारे जमीन पर का टाइटल ट्रैक, उसमें भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। इतने सारे अलग तरह के बच्चों को देखकर जो खुद अपनी हाइट को लेके इतने इनसिक्योर होते हैं कि मेरा कद छोटा है, वैसे कोच पहुंचते हैं, आमिर खान वैसे किरदार निभा रहे होते हैं, और फिर जो उनका नजरिया बदलता है,

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 10:35 से आगे बढ़ते हुए मजे की बात, चेहरे पे मुस्कान इस वजह से क्योंकि दिमाग की बत्ती जली ना अच्छा लगता है। वैसे जैसे खो जाते हो एकदम से, समझ ही नहीं पाते और उसके पास जो ट्यूबलाइट का चौक स्टार्टर ठीक होता है। नहीं आपने बोला कि आए, ये तो हम टेबल नंबर 21 में गेम की बात कर रहे थे, टेबल से वहाँ नियत फिसल जाती है अचानक से, मतलब फिर कोई मिल गया के साथ फिर क्या कॉमन है ना, सोचने पे कि हम मजबूर। तो सितारे ज़मीन पर भी आया, तो ऐसी स्टैनले का डब्बा, अलग अलग जो फिल्में होती है कई बार, कुछ फिल्में हमने नहीं देखी होती हैं और जो पकड़े जाते हो मेरी जान, हाय जब कहानी नहीं पता होती है और ऊपर ऊपर से देखा होता है ना तो सच में समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया। तो अब इतनी पुरानी फिल्म है तो चलो अब तो बता देना बनता ही है, तो अभी वार्निंग के साथ मैं बता रही हूँ आगे क्या हुआ। तो परेश रावल का जो किरदार था वो विलेन लग रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ वो करे जा रहे थे हीरो हीरोइन के साथ, बुरा हमको लग रहा था, अरे कितना सहेंगे बेचारे। और फिर जो अंत में तख्ता पलटता है, सब चीज़ पलट जाती है कि उनके बेटे के साथ कॉलेज में इन लोगों ने जो रैगिंग की होती है, मेरी तो किस्मत चलो बहुत ही अच्छी थी कॉलेज में कि हमारे साथ रैगिंग नहीं हुई थी, लेकिन मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि ये जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव जिस तरीके से उस फिल्म में दिखाया है, उनके बेटे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है और वो सिर्फ एहसास दिलाना चाहते हैं कि कैसा लगता है। क्योंकि जब आप होते हो उस उम्र में आपको शायद नहीं समझ आता कि छोटे छोटे मजाक कितने बड़े हो सकते हैं, और फिर मतलब किसी को बार बार आप नीचा दिखाते चले जाते हो, बस अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हो, तो फिर सामने वाले को उससे जूझना तो पड़ता है ना, और हर किसी के पास वो क्षमता होती नहीं है, होती भी है तो भी टूट जाते लोग, है ना, तो वो वाली बात है। तो इसी के साथ आपके दूसरे सजेशंस भी मैं देख रही हूँ दूसरी फिल्मों के, आपने लिखा हुआ है कि दम लगा के हैशा में भी वैसे ही हुआ था वजन को लेके। तो छोटी छोटी चीज़ें, जिसको भी किसी के बारे में कोई ऐसी बात मिल जाए हाय, जिसको लेके वो उसको बस कम महसूस करवा सके, लोग शुरू हो जाते हैं।

खुल गया क्या डब्बा, नाशा अवस्था हो गया ना। सुबह सुबह सुन रहे हो 107.1 नमस्ते भारत, कैसे हो। और ये गाना स्टैनली का डब्बा से सुखविंदर सिंह की आवाज में अमोल गुप्ते ने इसके बोल लिखे हैं। और बिल्कुल आप सभी के मैसेज में देख रही हूँ, रियासत, नाजमा, रियाज, मोहम्मद, समीरन, माहिरा सब एक साथ हैं एक एक मैसेज में, पूरा पूरा परिवार साथ दोस्त मिलकर सुन रहे हैं। आज क्या बात है, तो बैठक अलग अलग जगह पे जो जमी हुई है, तो कहीं इंदौर की बैठक है तो कहीं दादर से, जैसे एक मैसेज के बाद दूसरे आए जा रहे हैं कि एक नाम लिया गया है आपकी जगह का, तो आप सभी भी आओगे ही आदर्श, मुझे पता है। तो बात ऐसी है कि कभी कभी ना हमें पता भी नहीं होता कि किस तरह की बुलिंग होती है। जैसे हम अपने देश में खुश हैं, एकदम मस्त जी रहे होते हैं, लेकिन बाहर हिंदुस्तानियों को लेके भी काफ़ी आपने देखा होगा हेट होता ही है, बुलिंग होती है। और सच में जब हम वो चीज़ें सुनते हैं हमें लगता है, हाँ बिल्कुल मेरा भी आप ही के हैं जैसा रिएक्शन होता है कभी कभी। जैसे अभी डब्बा की बात कर रहे थे, खाने की बात कर रहे थे, तो खाने को लेकर भी एक तो हमारा खाना इतना स्वादिष्ट होता है, दूसरा उनसे बोला नहीं जा रहा होता है, तो कड़ी नहीं बोल पाते, तरकारी नहीं बोल पाते, करी बोल देते हैं। और उसके बीच में तो एक मैंने सोशल मीडिया पे जैसे देखा था, मुझे बहुत सही लगा कि अगर किसी के साथ ऐसा बुरा हुआ ना हो, जिसने महसूस किया ना हो, जैसे कोई हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हो, तो वो कैसे बिहेव करेगा। वो तो जाहिर सी बातें बोलेगा, हाँ अच्छा है ना, कितनी बढ़िया खुशबू होती है, हमें तो हमारे खाने बड़े पसंद आते हैं, नहीं। तो ये वाला जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास होता है अपने अंदर, कहना बड़ा आसान हो जाता है, कई बार सामने जाकर जब सब लोग झुंड में आपको कम बता रहे हो, लूज़र बता रहे हो, ऐसा कुछ, तो ऐसी कोई कमी तो है नहीं। हम लोग तो खुद ही अपने बारे में कई बार सोचते रहते हैं, हाय पढ़ाई में कहीं तो नहीं रह गए पीछे, कहीं सक्सेसफुल तो नहीं हुए ना, लाइफ में कुछ रह तो नहीं गया। तो घर से तो सुनने को मिलता ही है, हमारे परिवारों में जो एशिया के सारे परिवार है, सिर्फ

इंडिया की बात नहीं है, हर जगह पे कंपैरिजंस होते हैं, तुलना होती है कि घर के इस बच्चे ने इतना अच्छा किया, इसने नहीं किया, वो सब तो होता ही है, बहुत सारा प्रेशर होता है। अब क्या हम अपनी खुद क्या कम, मतलब हम लोग दुखी हैं कि आप लोग और हमको याद दिलाओगे हैं, तो वो वाली बात है, इधर चला मैं उधर चला कहाँ चलूँ। सुन रहे हो नमस्ते भारत, अपनी आरजे मृण्मयी मनोजा के साथ।

ऐसे हालातों में कोई अगर मिल जाता है तो सफर अपना सुहाना हो जाता है। बात सिर्फ बच्चों की नहीं है या फिर युवाओं की नहीं है, हालांकि हमारी इन्हीं बातचीत को लेकर कल्पना में लिखती है कि हाय मृण्मयी, जो बता रही हूँ ना, अब तो मैं जाके दोबारा से फिल्म देखूंगी। कभी कभी पुरानी फिल्में रिविजिट भी करनी चाहिए, दोबारा देखनी चाहिए अगर देख सकते हैं तो। हालांकि मुद्दा आज हमारा यही है, सामाजिक विषय, जिस पर हम कह रहे हैं सुनो गौर से दुनिया वालों वैसे तो बहुत सारे विषय होते हैं पर दिल की बात कहनी जरूरी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी दूध से धुला है, मैं तो कम से कम हुई नहीं, कभी कभी पता भी नहीं होता है। पता है ऐसा नहीं है कि टेबल नंबर 21 की तरह जानबूझ के करने वाले ही सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं होता। अभी आपका

और एक अभी मैसेज आया अमरावती से कि किसी के भी वजन के बारे में, कलर के बारे में, हाइट के बारे में, कोई भी चीज़ हो, जो कि आत्मविश्वास के बारे में जो आपने बोला बहुत अच्छा लगा, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर होता क्या है कभी कभी हम नहीं समझ पाते। अभी मेरी ही बात ले लो, 2 घंटे की फ्लाइट में जैसे मैं सोच रही थी लोगों में बर्दाश्त इतना कम हो गया, मेरे में तो है नहीं वैसे, बट दूसरों में और भी कम है, तो बहुत सारे उस दिन बच्चे थे हमारे फ्लाइट में, कुछ 20-25 उतरे, तो अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही है, ठीक है आप 2 घंटे तक चुपचाप हो, लेकिन पूरे सफ़र में पता है जो सीट है उसको मारे जा रहे हैं, हिलते जा रहे हैं, पैर मार रहे हैं, मतलब थोड़े से जो बड़े बच्चे होते ना वो। अब पूरा टाइम के बाद एक बार मैंने मुंह खोला और थोड़ा सा बोला कि ऐसा मतलब मत करो वो वाली चीज़, तो पेशेंस कभी कभी हमारी सहनशीलता जो है बांध जब टूटता है तो। पर उसके बाद जो साथ में उसकी लड़की बैठी थी, बड़ी बहन होगी शायद या पता नहीं, वो बोलती है कि ये ऑटिस्टिक है बच्चा, मुझे थोड़ी पता था, पीछे का दिखता थोड़ी है। तो फिर जो हम उतरे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जगह पे पहुंचने के बाद जो हमारी नज़रें मिली हैं और मैंने नज़रों से बोला है सॉरी, उसने भी मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराई, चलो बात ठीक हो गई, क्योंकि अनजाने में भी हो जाता है कभी कभी, अगर हमें पता हो तो थोड़ा सा हम ज़्यादा बर्दाश्त दिखा सकें, है ना। अब ये देखो, ये हमारी जो लड़की है यहाँ मैसेज कर रही है कि मरिन में आपका वज़न कितना है, मैं 50 किलो, मेरा 50 किलो के साथ आप मैसेज कर रही हो, आपको बुरा महसूस करने में क्या है ऐसा। नए गानों में 90s का तड़का दम लगा के हर्षा आपने बोला था, उसमें से ये गाना कुमार सानू, साधना सरगम।

तो दर्द करा रहा अपने दिल में ना उठने दें, ये गाना आ रहा है आपके पास अंधेरी ईद से। अंजू हैं, विश्वास हैं हमारे साथ चंदोरकर, विक्रम 8 बजे सुबह से हमें मैसेज किए हुए हैं, सभी के मैंने पढ़े हैं। और ये अनिकेत जायसवाल जो है नाम उन्होंने, आए हाय क्या बात है। तो श्रीधर बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और जो सारे लोग मैसेज नहीं कर पाए हैं वो भी बिल्कुल बुरा ना महसूस करें। राम जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, राम ने भी मैसेज किया हुआ है, सभी लोग ऐसे ही प्यार देते रहे वेलापुर से जैसे दत्तात्रेय ने। ऑल अलोंग आप सब लोग सुबह से लेकर अभी तक का जो हमारा सफर रहा है, आपको कार्यक्रम अच्छा लगा। रजनीकांत हमारे, बहुत सारे रजनीकांत हैं, सभी का मैंने पढ़ाया वैसे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते रहेंगे इसी तरह, सुनते रहना क्या 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ आपकी आरजे मृणमयी मनाजा, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, और दर्द करारा बढ़ने ना दे।

बिल्कुल ऐसे ही ढीठ बने रहना है। कोई पकाऊ बोले तो बोल देना, इतनी जल्दी नली निहारी क्यों बन जाते हो। कुछ भी ऐसा हो, अपनी तरफ लेते हुए आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरे जाने का समय, सुनते रहो 107.1 FM रेनबो मुंबई।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। NTA ने एक बयान में कहा है कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि यह दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। अंत में खेल समाचार। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे भारतीय दल के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय एथलीट जोश, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता की भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के एथलीटों का कौशल और समर्पण अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। पैरापा लिफ्टिंग की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में झंडू कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

ही हूँ मैं आरजे अनीता, आप सभी का कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। जैसे कि हमारे कई सारे श्रोता, खासकर जो महाराष्ट्र के निवासी हैं, वो जानते हैं कि आज है आषाढ़ी एकादशी, यानी भगवान विट्ठल को याद करने का दिन। वैसे तो हर ही दिन होता है, लेकिन आज कुछ खास। तो सोचा कि आगाज करें इस प्यारे से भजन से, जो कि मैंने लिया फिल्म बसेरा से, जिसमें सांवरे यानी कृष्ण को समर्पित है ये। तो चलिए सुनते हैं, आगाज करते हैं आज के ब्रेक फ्री का।

जी हाँ, इस प्यारे से फिल्मी भजन के बाद चलिए ब्रेक फ्री का ये सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रेक फ्री में हम बातें करते हैं ब्रेक फ्री करने की, यानी उन बेड़ियों को काट के फेंकने की जो हमें रोकती हैं। और अगर देखा जाए तो दो पीढ़ियों के बीच भी तो कुछ ऐसी ही तनातनी लगी रहती है ना। मतलब हर पीढ़ी को ये लगता है कि वो जो है पिछली पीढ़ी से कहीं ज़्यादा होशियार है, और साथ ही चुनौतियाँ उसके पास जो है पिछली पीढ़ी के मुकाबले अलग हैं और ज़्यादा है। क्यों? और इसी जद्दोजहद का नाम तो ये जो जेनरेशन गैप है वही है।

है ना, जब आपस में मानो एक टकराव सा है, प्यार तो है लेकिन टकराव सा है, और हर पीढ़ी चाहती है कि वो पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं को मानो ठुकरा दे और आगे चले। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। आपको ये भी बता दूं कि आज महान संगीतकार और ओपेनहायर के जो अरेंजर रहे जीएस कोहली, उनकी याद का दिन है, तो उसी उपलक्ष्य में एक खूबसूरत सा गीत उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ।

जी हाँ, ये फिल्म अनुभव का गीत, कानू रॉय का संगीत, गुलजार के बोल और गीता दत्त की वही दिलकश आवाज जो शायद आखिरी बार गूंजी। बहरहाल, बात हो रही थी जेनरेशन गैप की और कुछ जो अमूमन हमें इस संदर्भ में सुनाई देते हैं, कुछ ऐसे वाक्यांश या वाक्य समझे, आप नहीं समझेंगे, आपने ऐसी मुश्किल झेली ही नहीं, वक्त बदल गया है, क्या ये बातें आपको कुछ सुनी सुनी सी नहीं लग रही? जी हाँ, सोचिए इसके बारे में और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। और ये गीत भी जो है तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन शायद कम सुना हुआ फिल्म परिचय का गीत, तो सुनिए और बताइए कि आपने इसे पहले सुना भी है और आपको ये कैसा लगता है।

जी हाँ, ये फिल्म परिचय का एक कम सुना हुआ गीत। और बहरहाल ये छोड़े जाती हूँ मैं आपको एक और प्यारे से भजन के साथ, जो शर्मा बंधु की आवाज़ों में है और जयदेव का संगीत है, आपने शायद पहचान लिया होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, 11:30 बजे होता है हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम होता है स्टम्प्ड, और उसके बाद 11:48 पर फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। तब तक लीजिए इस भजन का आनंद, फिर मिलेंगे।

सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फे मेरे यानी आरजे अनीता के साथ। बस अब एक ही गाने की गुंजाइश है और साथ ही साथ चूंकि बातें हो रही थी जनरेशन गैप को लेकर ब्रेक फ्री में, जहां हम बातें करते हैं कुछ अलग करने की, तो मतभेद तो होने स्वाभाविक ही हैं। अक्सर जो कारण होते हैं मतभेद के, वो करियर के चयन को लेकर या फिर खेल कूद और पढ़ाई के बीच सामंजस्य बिठाने को लेकर या फिर मनोरंजन के तरीकों को लेकर या बचत और खर्च के मुद्दे, तो ये सारे जो हैं पेचीदे मुद्दे होते हैं, खैर सुलझ भी जाते हैं और टिक टिक टिक टिक जैसे चलती जाती है घड़ी और कल आज और कल की जुड़ती भी है कड़ी। जी हाँ, इसी सोच इसी विचार के साथ मैं छोड़े जाती हूँ आपको इस गीत के साथ, फिल्म कल आज और कल का ये गीत। और ठीक 12 बजे होंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिक कैफे, जिसमें मैं लेके आई हूँ कुछ चुनिंदा गीत, कुछ ऐसे गीत जो शायद एक अलग दृष्टि और दृष्टिकोण से मैं पेश कर रही हूं। फिलहाल सुनिए ये गीत और मुझे दीजिए इजाजत। ठीक 12 बजे फिर मुलाकात होगी।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह शुभ दिन भक्ति और करुणा के शाश्वत संदेश का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की कि भगवान विट्ठल का आशीर्वाद सभी के जीवन में सुख सद्भाव और समृद्धि लाए और देश को एक बेहतर समाज की ओर अग्रसर करे। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज पंढरपुर के पवित्र स्थल पर भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी की आधिकारिक महापूजा और अभिषेक किया। उन्होंने महाराष्ट्र की खुशहाली और समृद्धि, किसानों की भलाई और सभी नागरिकों के मंगलमय जीवन के लिए भगवान विट्ठल के चरणों में प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी और श्री अमरनाथ यात्रा आज से पुनः आरंभ हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालताल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा पुनः शुरू कर दी गई है। 6,269 तीर्थ यात्रियों का एक जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली के सुधार में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

जी हाँ, शुभ दुपहरी। मैं हूँ आरजे अनीता आपके साथ कार्यक्रम म्यूजिक कैफे, और लेके आई हूँ कुछ अलग गीत। अलग इसलिए क्योंकि ये कुछ ऐसी आवाजें हैं जो है तो बहुत मीठी, बहुत सुरीली, लेकिन कम सुनी जाती हैं और शायद कम गीत भी गाए हैं इन्होंने। तो शुरुआत करूंगी इस आवाज से। आप पहचानिए इस आवाज को, और आपसे अनुरोध है कि अगर गूगल देवता की शरण न लेते हुए आप बताए तो और ज्यादा खुशी होगी। फिलहाल कार्यक्रम का आगाज करती हूं इस आवाज के साथ, पहचानिए इसे।

जी, आप पहचाना इस आवाज को? कई सारे लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन अफसोस की गलत है, क्योंकि ये नरेंद्र चंचल जी की आवाज नहीं है, ये है चंद्रशेखर गाड़गिल जी की आवाज। तो चलिए, पहला बाउंसर रहा, लेकिन अगली आवाज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। और शर्त यही कि अगर आप गूगल देवता का सहारा न ले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप पहचानिए कि आशा जी के साथ कौन से कलाकार हैं जो गा रहे हैं, जिन्होंने अपनी आवाज दी है इस गीत में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
5: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

भारत है, लेकिन कई हमारे श्रोता हैं जिन्होंने डैनी और आशा भोसले, जी हाँ आशा ताई के साथ डैनी गा रहे हैं और पर्दे पर भी नजर आते हैं। फरीदा जलाल उनके साथ है और ये गीत सुनने में जितना प्यारा है देखने में भी उतना ही। बहरहाल चलते हैं दो और अलग आवाजों की ओर। जी हाँ, येसुदास की आवाज़ तो है ही, उसके साथ दो और आवाजें हैं, उन्हें आप पहचानिए है।

जी हाँ, बहुत कम लोग पहचान पाए इन आवाज़ों को। ये थी कुमारी फैयाज और मधु रानी, जो यशुदास के साथ गा रही थी फिल्म का नाम आलाप, जयदेव का संगीत। शास्त्रीय राग पर आधारित ये खूबसूरत सा गीत, जहाँ पर संगीत सिखाने का प्रयास चल रहा है और इस तरह का संयोजन था। बहरहाल, एक और आवाज़ की ओर चलते हैं और ये काफ़ी आसान है मेरे ख्याल।

जी हाँ, ये आवाज़ बहुत आसान थी पहचानने में। रविंद्र जैन संगीतकार, गीतकार और गायक कलाकार भी, यानी हर फन मौला संगीतकार रहे, वो मुख्यतः संगीतकार लेकिन गीतकार भी, पर गाए बहुत कम गीत। बहरहाल अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसमें तीन आवाज़ें हैं। दो तो अच्छी खासी पहचानी हुई हैं, कई सारे गीत उन्होंने गाए हैं, उनको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, मोहताज नहीं है। लेकिन जो तीसरी आवाज़ है, जो सबसे पहले सुनाई देती है, वो किसकी है? मेरे ख्याल से आप काफ़ी जानकार हैं और आप अवश्य पहचानेंगे। तो सुनिए और पहचानिए पहली आवाज़ जो आपको सुनाई देती है।

जी हाँ, जो शुरुआती स्वर आपने सुना वो महान गीतकार आनंद बख्शी साहब का की आवाज़ थी, और इन्होंने वैसे तो अनगिनत गीत लिखे और कुछ गाने गाए भी, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया के गीत गाए और साथ ही फिल्म चरस का ये जो शुरुआती भाग है वो, और अगर आपको याद होगा फिल्म बालिका वधु का भी एक गीत याद आता है, जगत मुसाफिर खाना। बहरहाल अगली आवाज की ओर चलते हैं, ये भी एक संगीतकार की आवाज है और खैर ये गीत ही इतना मशहूर है तो शायद आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

या ये काफी आसान था ना, मदन मोहन जी की आवाज और उन्हीं की संगीत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, फिल्म थी दस्तक। बहरहाल चलते हैं एक और दो गाने की ओर। वैसे तो एक आवाज बहुत आसानी से आप पहचान लीजिएगा, लेकिन दूसरी आवाज को पहचानने की कोशिश करिए और बताइए, हमें नाम लिख भेजिए।

जी हाँ, फिल्म गोलमाल का ये शीर्षक गीत, टाइटल सॉन्ग और जो म्यूजिक भी बजा रही हूँ गीतों के अंतर, गीतों में अंतर रखने के लिए, वो भी तो गोलमाल का ही ट्रैक है। बहरहाल, जो दो आवाज़ें थी, एक तो सबने बड़ी आसानी से पहचान ली, आरडी बर्मन साहब की, जो संगीतकार भी थे इस फिल्म के। दूसरी आवाज़ थी सपन चक्रवर्ती की। कईयों ने किशोर कुमार लिख के भेजा, लेकिन अफसोस कि वो गलत है। सपन चक्रवर्ती आगे चल के स्वतंत्र रूप से संगीत भी देते नजर आए। सपन जगमोहन की जो जोड़ी बनी उसमें सपन चक्रवर्ती थे। तो एक और आवाज़, अब एक फीमेल सिंगर की आवाज़, जो खुद एक्ट्रेस भी थी, कुछ फिल्में उन्होंने की, और ये आवाज़ बिल्कुल अलग है और आसानी से आप पहचान जाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गीत बहुत सुंदर है।

0: जी हाँ, ये आवाज़ थी सलमा आगा जी की। और हमारे कई सारे श्रोताओं ने सही जवाब भेजे, राकेश माथुर जी, दीपा पालकर जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, आदर्श कनौजिया जी, अमित भगत, चेतन कुमार जी, मुकेश वालिया जी देहरादून से, राजेंद्र परमार जी, पंकज महोड़ जी। जी हाँ, तो मैं देख रही हूँ कि कई सारे श्रोताओं ने शिरकत की है और शायद उन्हें मज़ा भी आ रहा है जवाब देते हुए, और हमें भी आप कि ये जो मौजूदगी है हमारे साथ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जो अगली आवाज़ है ये तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन सोचा कि इस आवाज़ को तो ज़रूर सुनवाना चाहिए ऐसे कार्यक्रम में। तो लीजिए सुनिए, जयदेव के संगीत निर्देशन में ये खूबसूरत सा नगमा जिसके बोल भी उतने ही सुंदर।
1: कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसे लड़ने से पहले ही आदमी हार जाता है। मैं हार गया हूं छाया।
2: सुधी।
1: हाँ छाया, लगता है यहां तो सिर्फ दूसरों के सर पे पांव रख के ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है। सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहां गुहा चला गया। इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए।
2: मैं तुम्हारे साथ हूं सुदीप, तुम्हारे साथ छोटी सी खोली में भी अपना घर बसा लूंगी।
1: झूठे आदर्श की बात मत करो, चिढ़ होती है मुझे। घर बना लोगी, कपड़े के लीर का दिया जलाओगी और शाम को आधी सूखी रोटी खिलाकर सोचोगी कि हम लोगों ने घर बना लिया। हाथों में पेट लिए घूमोगी तुम और मैं पेट पे हाथ रखे घूमूंगा। इसे घर कहती हो तुम? नहीं छाया, बहुत देखा है ऐसे पीले चेहरों वाला आदर्श।
2: तुम निराश होगे सुदीप, मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
1: हाँ, विश्वास, विश्वास, तुम्हें विश्वास है ना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा? है, एक रास्ता है। हाँ छाया, मैंने भी अपनी सीढ़ी चुन ली। मोदी,
2: मोदी
1: तुमसे शादी करना चाहता है ना? कर लो शादी, समझने की कोशिश करो छाया, कितने दिन जिएगा और कितने दिन जी सकता है। हाँ छाया, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ इसके बाद ही हम लोग अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं।
0: ये आवाज तो है अमोल पालेकर जी की, संवाद फिल्म घरोंदा के, लेकिन गीत में जो आवाज है वो बताएं।

जी हाँ, जहाँ संवाद है अमोल पालेकर और जरीना वहाब के, उधर जो आवाज है वो है रूना लैला जी की। इसी गीत का एक और संस्करण है, लेकिन ये आखिरी मोड़ पर यानी जब क्लाइमैक्स की ओर कहानी बढ़ती है तब का ये संस्करण है रूना लैला जी की आवाज। तो दोनों ही संस्करणों में बेहद खूबसूरत। फिलहाल ये कार्यक्रम का आखिरी गीत जो एक भजन है फिल्म पूरब और पश्चिम से लिया है मैंने, इसे इसमें महेंद्र कपूर की आवाज तो है और बाकी की जो दो आवाजें हैं उन्हें आप पहचानिए, और अगर समय समाप्त हो रहा होगा तो मैं खुद ही आपको अंत में बता दूंगी।

जी हाँ, तो यही था सफ़र आज के म्यूज़िक कैफ़े का। ये आवाज़ें महेंद्र कपूर के साथ थी बृजभूषण जी की, और साथ में जो फीमेल वॉइस आपको सुनाई देती हैं वो है श्यामा जी की, जो कि सुमन कल्याणपुर जी की बहन थी। जी हाँ, उनकी भी आवाज़ इस फिल्म में गूंजी। बहरहाल वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। उम्मीद करती हूँ आज का ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा, और कई सारी ऐसी कम सुनी हुई आवाज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। 1 बजे होंगे समाचार, और फिर 1:05 पर होगा आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम हिट एंड हॉट। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: कार्यक्रम है हिट एंड हॉट, आप ही की पसंद के गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में और हम भी इसका खूब आनंद लेते हैं क्योंकि अलग अलग

फरमाइशें आती हैं अलग कालखंडों से। तो बहरहाल शुरुआत करेंगे फिल्म साथ साथ के इस गीत से, और गीत के बाद मैं बताऊंगी कि फरमाइश करने वाले कौन हैं।

यह फिल्म साथ साथ के इस गीत की फरमाइश की थी विजय महुबिया जी और उनके कई सारे परिवार के सदस्य और दोस्त खंडवा मध्य प्रदेश से। और अगली फरमाइश की ओर बढ़ेंगे, ये रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है, तो सुनिए और गीत के बाद मैं फरमाइश जो करने वाले हैं उनके नाम पढ़ दूंगी।

ये जो रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे, ये थी पसंद प्रमोद चिंचोड़कर जी की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत पसंद आया होगा। और अब अगली फरमाइश की ओर हम बढ़ते हैं। ये फरमाइश है दीपा पालकर जी की माहिम से।

अक्सर गीतों में रात के बजाय दिन को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि दिन सवेरा कब होगा, कब सूरज निकलेगा, लेकिन ये बिल्कुल हटके गीत जहां पर रात को रुकने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि नायिका की अपनी एक मजबूरी है, यानी हालात तय करते हैं कि आपको चाहिए कि रात रुके या सुबह आए। बहरहाल चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। यह है पंकज मोहर जी की फरमाइश अमरावती से, और ये हमें बता रहे हैं कि ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म लापता लेडीज का ये गीत, क्योंकि आज है संगीतकार राम संपत जी का जन्मदिन और पूरा आकाशवाणी परिवार भी उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देता है। तो लीजिए सुनिए पंकज जी आपकी पसंद का ये गीत।

अगली पसंद है प्रकाश शिंदे जी की, और ये हमें बता रहे हैं कि आज फिल्म राम तेरी गंगा मैली जो 25 जुलाई 1985 को रिलीज हुई थी, इसके 41 साल पूरे हो गए हैं, और इसी फिल्म से एक गीत वो सुनना चाह रहे हैं, मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। जी हाँ, शायद प्रकाश जी आप भी अकेले हैं जो इस तरह से जद्दोजहद कर करके हमें ये जानकारी भेजते हैं, तो भेजते रहिएगा, बड़ी खुशी होती है जानकर।

अगली जो पसंद है वो है राकेश माथुर जी की, पुणे से, और ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म भीगी रात 1965 की, ये फिल्म रफी साहब की आवाज में, दिल जो ना कह सका। खैर लता जी की आवाज में भी इसका एक वर्जन है, लेकिन ये रफी साहब की आवाज में सुनना चाहते हैं। तो चलिए राकेश जी, आपके साथ हम भी लुत्फ उठाते हैं इस गीत का।

ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फिल्मांकन देखा होगा इसका, तो यहाँ पर लाइव ऑर्केस्ट्रा बज रही है और प्रदीप कुमार जी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि अंत में गाना उनसे गाया नहीं जाता, ऑर्केस्ट्रा बजता रहता है बीच में। गौर करिएगा।

0: Money FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: जी हाँ, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम हिट एंड हॉट में। कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा गीत मैं शामिल करूं, तो इसीलिए गीत पूरे बज नहीं पाएंगे, तो प्लीज क्षमा करिएगा। ये जो पसंद है ये है अमित भगत जी की मालेगांव से, ये फिल्म सौगंध का गीत सुनना चाह रहे हैं, लैला को भूल जाएंगे। तो चलिए कैसे भूलेंगे ये भी सुन लेते हैं।

अगली पसंद है विजेंद्र घाटोल जी की अकोला से, ये सुनना चाह रहे हैं विनोद राठौड़ जी की आवाज में ये गीत, तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत विजेंद्र जी।

अगली जो पसंद है वो है फिरोज सिगनपुरिया जी की, ये सुनना चाहते हैं फिल्म उमराव जान का कोई भी गीत, तो ये जो वर्जन है आशा भोसले जी की आवाज़ में, ये एक छोटा वर्जन है इस गीत का, तो इसका आनंद लीजिए, है बड़ा खूबसूरत।

अगली जो पेशकश है वो है मुकेश वालिया जी की फरमाइश। देहरादून से ये हमें फरमाइश भेज रहे हैं। ये सुनना चाहते फिल्म स्वामी का ये गीत, जो एक ट्रेडिशनल सा गीत है, लेकिन येसुदास जी ने बड़ी खूबसूरती से इसे गाया है।

जी अगली जो पसंद है वो है चेतन कुमार जी की मानपुर बाजार गया बिहार से। ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म गाइड का सदाबहार गीत, जो जीने की भी बात करता है और मरने की भी, और दोनों एक साथ।

अगली जो पेशकश है वो है हमारे एक बहादुर सिपाही की भेजी हुई फरमाइश, जो कि अरुणाचल प्रदेश में तैनात है और जब भी वक्त निकाल पाते हैं हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जैसे सैनिकों के कारण ही तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सुनना चाह रहे हैं, ये है सुषेण निहरकर जी, और ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म वास्तव का गीत मेरी दुनिया है। तो लीजिए सुषेण जी, आपके लिए आपकी पसंद का ये गीत।

जी हाँ, तो ये थी आज की हिट एंड हॉट, और कई सारे हमारे श्रोता हैं जिनकी फरमाइशें शामिल नहीं हो पाई, माफ़ करिएगा वक्त की कमी के कारण। और कई सारे श्रोताओं ने हमें ये भी लिख के भेजा है कि आप अपनी पसंद का कोई गीत ज़रूर सुनवाते चलिए। तो ये है अभिजीत गावणकर जी, उनके नाम मैं पढ़े देती हूँ जिनके गीत मैं नहीं बजा पाए। अभिजीत गावणकर जी, राजेंद्र परमार जी, गुरमीत सिंह जी, मीता सिंह जी, दिग्दर्शन और कविता, और साथ ही मुकेश कश्यप जी, लालगिरी गोस्वामी जी, सुभलक्ष्मी जी, और हीरामणि वर्मा जी, स्वरण सिंह जी, विठल मुंगासे जी, और मिंटू थॉमस, पिंकी और लवली, यानी कई सारे गीत मैं बजा नहीं पाई, माफ़ करिएगा। और जिन्होंने ये दरख्वास्त की है कि मैं कोई गीत बजाऊं, क्योंकि सबके गीत बज नहीं पाएंगे, तो बस छोड़े जाती हूँ आपको फिल्म भरोसा के इस गीत के साथ, ये भरोसा दिलाते हुए कि आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना चाहे कल बातें जितनी, यानी कल तो कल पे है, पता नहीं वो कल कब आएगा लेकिन ज़रूर आएगा, इसी उम्मीद के साथ। अब मुझे यानी अर्जेंटिता को इजाज़त दीजिए, 2 बजे होंगे समाचार अंग्रेज़ी में और फिर हिंदी में क्रमशः हमारे दिल्ली केंद्र से। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, नमस्ते।

0: भेटी आज दर्यवट सुना बेस और द गोल्डन अटायर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड बलभद्र एंड देवी सुभद्रा विल बी सेरेमोनियली ऑब्जर्व दिस इवनिंग एटॉप देयर मैजेस्टिक चैरियट स्टेशन ऑन द ग्रैंड रोड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑनर्ड रिचुअल द साइबलिंग डाइटीज विल बी एडोर्न्ड विथ अराउंड 208 किलोग्राम्स ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स कंप्राइजिंग गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मटेरियल्स सिंबलाइजिंग डिवाइन मैजेस्टी प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिवर्सल बेनिवोलेंस Elaborate security arrangements and extensive pilgrim facilitation measures have been put in place to ensure the smooth conduct of the occasion, which is expected to draw millions of devotees from across India and abroad. Prakash Das for Akashvani News.
1: Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. On to sports. In men's cricket, India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of this three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Chandu Kumar, clenched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है।

0: स्तर पर जारी है।
1: जेआरएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई के मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थ यात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थ यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।

0: रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
1: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं से बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के नाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है कृषि

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: नमस्कार, बिल्कुल म्यूजिकली ऑज 5:02 हो गए हैं। न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। मेरा नाम है वसीम, प्रोग्राम है लव यू जिंदगी और मैं रहने वाला हूं आप लोगों के साथ रात 8 बजे तक। ये सुरीला सफ़र लेकर, सुरीला सफ़र नाम तो आपको याद ही होगा। फ़िलहाल ये गानों का सफ़र, ये सिलसिला मैं जारी करता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ खूबसूरत से गाने और फिर बातों का सिलसिला जारी रहेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें, साथ ही साथ कुछ सवाल जवाब, ऑफकोर्स कुछ अचीवमेंट्स का भी जिक्र करेंगे। आप और हम शेर व शायरी अंदाज बयां, सारी चीज़ें होंगी। बस आपको करना है थोड़ा सा इंतज़ार, बने रहना है, कहीं भी जाएँ सुनते रहें। क्यों कहूँ कहीं ना जाओ, जाओ लेकिन सुनते रहो स्टूडियो, दिल से ही दिल तक।

0: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
1: बिल्कुल रिलैक्स एंड चिल, 5:13:35 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी। देर लगी लेकिन मैंने अभी जीना सीख लिया। यू नो, इस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अगर इस फिल्म के इस टाइटल पर अगर रुक कर सोचा जाए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सदमा ले लें। नहीं, ऑफकोर्स उसके गाने की रिक्वेस्ट आई है उस फिल्म की, लेकिन ये जिंदगी की हकीकत, मतलब जो ये लम्हा है अभी इस वक्त, लव यू जिंदगी हम जो कह रहे हैं, ये जो मोमेंट्स हमें मिले हैं, इसे जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ये लम्हे चले गए तो फिर हमें ये लग रहा है कि अभी बहुत वक्त है, फिर बाद में ऐसा रियलाइज़ होगा कि अब वक्त नहीं। तो इन चीज़ों के बीच का जो फ़र्क है उसे वक्त पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही आप सब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच दीपा पालकर जी, दिस इज़ 227। प्रकाश शिंदे, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। विजेंद्र अकोला से, वैदेही, प्रणव शिंदे, पंकज माहौर, किशोर नायक, श्रीपद जोशी, नमस्कार। आप सभी लोग जितने भी जुड़े हैं मेरे साथ इस वक्त।

लव इज़ ज़िंदगी में, और बहुत अच्छा लग रहा है। लव इज़ ज़िंदगी में कुछ और बातें मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों के साथ, लेकिन ये जो गाने चल रहे हैं इनका जो सिलसिला है वो बहुत ही कमाल है, और ये गोल्डन जनरेशन के बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप सभी लोग जितने भी अभी ट्यून इन किए हो तो सुनना ज़रूर इन गानों के। उस पार मिलूँगा आप लोगों से मैं उस बात को लेकर। साथ ही साथ ये जो गाने हैं, श्रीनिवास ने एक गाना बहुत कमाल का गाया, श्रीनिवास वही है, उन्होंने एक मुसाफिर हूँ या जो किशोर कुमार साहब को ट्रिब्यूट दिया था, वो भी ज़रूर सुनना जब कभी मौका मिले आपको। फिलहाल ये गाना आप सभी लोगों के लिए लव इज़ ज़िंदगी पर जो म्यूजिकली आज दिल से दिल तक।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक

0: परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
3: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 5:30 और 46:47 हो चुके हैं। प्रोग्राम लव यू जिंदगी चल रहा है और आप हैं वसीम के साथ। हम वो गोल्डन जनरेशन है। गोल्डन जनरेशन की जो मैं बात कर रहा था, वैसे आप लोगों के मैसेजेस के जवाब दूं या ये बातों का जिक्र करूं, लेकिन जो लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं, ये ख़ास उन लोगों के लिए कि हम वो गोल्डन जनरेशन है दोस्तों, जिसने स्लेट से शुरुआत की, यानी चौक स्लेट, और आज AI चला रहे हैं, लैंडलाइन के तारों से लेकर 5G के ज़माने को जिया है, CD DVD से लेकर क्लाउड स्टोरेज तक का सफ़र देखा है। तारीख गवाह है इस बात की, तकनीकी इतिहास में हमारे जैसा अपग्रेड शायद ही होगा और आज तक किसी पीढ़ी ने नहीं देखा होगा। ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन की जो मैं बात करूँ, आगे तो सुनो, अभी तो उम्र बाकी है मेरे दोस्त। क्या आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ, जो लोग ये महसूस करते हैं कि हाँ ये हमारे लिए था और बिल्कुल हम उसी जनरेशन से हैं, सो डेफिनेटली यू कैन मैसेज 8657661071 पर। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। रजनीकांत, पंकज, विजेंद्र, वैदेही, मीना जी, राकेश माथुर, विकास शिमरकर, दीपा पालकर, सभी लोग थैंक यू सो मच। भेजिए मुझे और मैं समझ जाऊँगा कि ये मैसेज आप लोगों तक बिल्कुल पहुँच चुका। फिलहाल गानों की तरफ रुख करते हैं। आप और हम लव यू जिंदगी, स्टे ट्यून्ड, वीकेंड वाइब्स, दिल से दिल तक।

0: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
1: Well, शामीन को आपने सुना होगा और रिलैक्स एंड चिल 5:44:56 ऑन द स्टूडियो क्लॉक और लक्की चाम द जोया फैक्टर, ये रघुवीर यादव और शंकर महादेवन, कमाल का सॉन्ग है ये। इसको अगर आप सुना, अमिताभ भट्टाचार्य, ग्रेट ग्रेट राइटिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स, और कमाल की जो कंपोजिशन थी शंकर एहसान लोय की। और उसके पहले ब्रेकअप सॉन्ग भी आप लोगों ने सुन लिया। अभी फिलहाल दो गाने

और मैं सुनाऊंगा, इनफैक्ट दो तीन गाने जब तक ये शो कंप्लीट होगा। लेकिन आप सभी लोगों के फीडबैक बहुत अच्छा लग रहा है। AI मतलब प्रकाश, दैट वाज गुड कि आप AI का जिक्र कर रहे हैं। मतलब हम अपनी मम्मी को बुलाया करते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया और समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, और आप उन्हीं में लोगों में से हैं जिन्होंने स्लेट से शुरुआत की है। थैंक यू सो मच फॉर द कन्फर्मेशन। और वक्त बदल गया, अब मुझे ये भी मैसेज आप लोग करके बताइए, ये दो गाने तो मैं प्ले कर ही रहा हूँ, आप लोग उसको ज़रूर सुनेगा उन्हें, लेकिन आखिरी जो गाना है आज इस लव जिंदगी का, मैं चाहता हूँ आप लोग उसके लिए मुझे जल्दी से एक मैसेज करें। मैंने कभी इसके लिए मैसेज करने का ऐसा कहा नहीं आप लोगों को, लेकिन अभी अगर आप करें, कितने लोग ये चाहते हैं कि ये रेडियो सफ़र, ये खूबसूरत सी जो ट्रांजिशन है, ये इतना कुछ आप लोगों का साथ, आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के कॉल्स और गाने, बातें, यू नो, अपडेट्स, न्यूज़, सब कुछ, बहुत ही ब्यूटीफुल एक रेनबो फैमिली। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं ये गाना प्ले करूं कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते हैं, आप मुझे मैसेज करें। फिलहाल ये गाने आप लोगों को सोचने का वक्त है, मैसेज का वक्त है, स्टे ट्यून, वरना मैं तो प्ले कर ही दूंगा दिल से दिल तक।

चलिए, किक फिल्म को 12 साल पूरे हो चुके हैं और हाँ, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं, डायलॉग बहुत सारे हैं इस फिल्म के। प्रकाश, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। आप सभी लोग बने रहिए, ये गाना प्ले हो रहा है। आप लोग सभी लोगों ने जो फीडबैक दिया है, मैसेज किया है कि ज़रूर प्ले करिए सर, वो मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। और आप जितने भी चाय के शौकीन हैं, ये जो ब्रेक होगा अभी न्यूज़ होगा और उसके बाद आप लोग चाय, मैं अंदाजे बयां में कुछ बात का जिक्र करूंगा, उसके बाद ज़रूर पीना, तो उसका लुत्फ और आएगा। बाकी मर्जी आपकी, स्टे ट्यून्ड।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
1: ये कहा
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे, प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ। प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7, तो ट्यून इन करें 107.1 FM रेनबो जनाब।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जी हाँ, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। और अब ये प्रोग्राम अंदाज़े बयां मैं वसीम लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के साथ, और उम्मीद है कि आप लोगों से मैंने जो चाय को लेकर बात कही थी वो बहुत ही काम आई और आप इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे मैसेज आया है, वैसे आप लोगों के आए हैं इनफैक्ट, और लेकिन मैं एक जो उस गाने को मैंने प्ले किया था सिलसिला फिल्म से जावेद अख्तर साहब ने जो लिखा, अमिताभ बच्चन साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में था, उसमें जो है ना, हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते, या हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते, खासकर उस एहसास को अगर आप महसूस करें उस लफ्ज़ को, उन अल्फाजों को, और उसे इमेजिन करें तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो अक्सर मैं लाइन है ना कभी सुनता गुनगुनाता, और आप लोगों के भी फीडबैक उसमें मुझे मिलते चले जा रहे हैं। सो अच्छा लग रहा है कि हम लोग कनेक्टेड हैं और जो वाइब्स मैच हो रही है, ऑफकोर्स आप सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फीडबैक के लिए, आप सभी लोगों के लिए। अब अंदाज़े बयां की तरफ रुख करते हैं आप और हम। बारिश का मौसम और थोड़ा बहुत फेर बदल इसमें चलता रहता है। ट्रांजिशन की बात की मैंने, कहा था ना स्लेट से AI तक, तो बारिश भी धूप छाँव और फिर, लेकिन आप प्रिपेयर्ड हैं, हम सब तैयार हैं, तो बस ये सिलसिला जारी रहे और बारिश रहमतों वाली हो जहमतों वाली नहीं, यही दुआ करते हैं। और बहुत खूबसूरत गज़ल है जो निदा फाजली साहब ने लिखी है, जगजीत जी और चित्रा जी ने गाया है, इसे सुनते हैं, इसका लुत्फ़ उठाते हैं, और आप बने रहिए मेरे साथ अंदाज़े बयां हुए, दिल से दिल तक।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नई गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, अंदाज़े बयां में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। शाम 6:30 और 54:55 सेकंड्स आप लोग अंदाज़े बयां पर वसीम के साथ हैं और आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़। अब चाय का इंतज़ार आप

सभी लोग कर रहे हैं और आप लोगों के मैसेज भी मुझे मिल रहे हैं। काजल बहुत अच्छे शेर थे, मीना जी नमस्ते, काजल काकर अच्छे शेर हैं और हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों, ये लाइन मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और इस पर गौर करने वाली बात है, लेकिन जो है हकीकत वो हकीकत ही रहेगी। चलिए आप सभी लोग सुनिएगा चाय को लेकर जो बात का मैं जिक्र कर रहा था, चरागे सब्र जला, मतलब सब्र का चराग। ये शायराना अंदाज है तो इसे उस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि चरागे सब्र जला चाय पीने चलते हैं, चाहे दो दोस्त आपस में जैसे बात करें। चरागे सब्र जला चाय पीने चलते हैं, गमों को आग लगा चाय पीने चलते हैं, गम ज़माने ने लबों में तलखियां भर दी, मतलब उस तरह से बात, एक तंजिया तौर से बात और कोई ऐसी बात जो दिल को लग जाए, तो गम ज़माने ने लबों में तलखियां भर दी, कह कहे लगा चाय पीने चलते हैं, कई दिनों से तबीयत बुझी बुझी सी है, चल अपना हाथ थमा चाय पीने चलते हैं। बोलिए अपने दोस्त को जो आपके इर्द गिर्द हो, आपके साथ हो, या आपको लगता हो चाय पीना चाहिए, जाइए चाय पी कर आइए और इन लम्हों को खुलकर जी लीजिए। बने रहिए मेरे साथ, बरसात का मौसम चाय पीने को यकीनन शह देता है। स्टे ट्यून्ड।

0: आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ। प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7, तो ट्यून इन करें 107.1 एफएम रेनबो जनाब।
1: एक बार फिर से आप सभी लोगों का खैर मकदम है इस प्रोग्राम अंदाज़े बयां में। और पी लूँ जो ये इरशाद कामिल साहब ने लिखा है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से, और तेरे संग इश्कदारी है, खुमारी है, चैन दी मुझको बेकरारी है, तेरे बिन जी नहीं लगता, जी नहीं सकता, और कई सारी बातें। लगता नहीं आप लोगों को कि ये चाय से भी रिलेट किया जा सकता है इन बातों को, है ना, उसकी तरफ भी रुझान किया जा सकता है, उसे इसमें शामिल किया जा सकता है। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपके जो मिजाज को और मूड को चेंज करता हूँ, यकीनन आप एहसास करेंगे। जो गज़लें मैं सुनाने वाला हूँ आप लोगों को, वो फिर से हम उसी वक्त में चले जाएंगे जो मैंने निदा फाजली साहब की गज़लों का जिक्र किया था, और वो लेकिन मैं कुछ उसके साथ जुड़ी बहुत ही खूबसूरत बातें शेयर करना चाहता हूँ कि जेम्स जॉयस ने कहा था कि आपका ना होना ही आपको सबसे ज़्यादा या आपकी सबसे ज़्यादा मौजूदगी दर्ज कराता है। इस पर शाहीन अब्बास का एक शेर है कि वो सामने था तो कम कम दिखाई देता था, चला गया तो बराबर दिखने लगा। गुलजार साहब ने कहा कि आपके बाद हमने हर घड़ी आपके साथ गुजारी है। और एक और शेर, जो चला गया मुझे छोड़कर वही शख्स आज तक मेरे पास है। क्या ये एहसास सही है? क्या ऐसा है? क्या ऐसा होता है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या नहीं? 8657661071 पर आप अपना नज़रिया शेयर कर सकते हैं। मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को खूबसूरत गज़लों की तरफ इस अंदाज़ में प्रोग्राम में, इससे पहले के 7 बजे न्यूज़ अपडेट्स आए। स्टे ट्यून्ड।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट रूल करेगी रेनबो की प्लेलिस्ट एवरी इवनिंग 7 to 8 PM इन प्रोग्राम हम तुम और गाने तुम्हारे ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।
2: जी हाँ, बिल्कुल सही। एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल और ये प्रोग्राम हम तुम वसीम के साथ 7:12:41 हो चुके हैं। उम्मीद है कि जो ये 2 घंटे गुजरे हैं आप लोगों के साथ लव जिंदगी और अंदाज हुए हैं वो यादगार रहे होंगे। कुछ बातें, कुछ लम्हे, कुछ गाने, कुछ गज़लें, कुछ शेर व शायरी, है ना। तो अब और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप लोगों के इतने लंबे मैसेज की लिस्ट है ये। काजल थैंक यू सो मच, विजेंद्र मीना जी बहुत शुक्रिया, ज़रूर प्ले करते हैं। सुशील यादव, मीरा सिंह, दीपा पालकर, फिरोज सिगनपुरिया, अजय साखरे, प्रकाश शिंदे, प्रमोद बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश माथुर वैदिक थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग बने रहिए हम तुम पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट ये रही एक के बाद एक।

7:27 हो गए, 27-28 सेकंड हो चुके हैं इश्क सूफियाना हम तुम, ज़्यादा गाने और कम बातें आप लोगों के साथ। मैं हूँ वसीम और उम्मीद है ये सफ़र बहुत अच्छे से गुजर रहा है और सारे इत्र की खुशबू आज मंद पड़ गई, सारे इत्र की खुशबू आज मंद पड़ गई, मिट्टी में बारिश की बूंदें जो चंद पड़ गई। शुक्रिया अरविंद, थैंक यू सो मच फॉर दैट शेयर। और आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ, आप लोगों की रिक्वेस्ट मैं प्ले कर रहा हूँ। फिरोज़, तुमने कुछ ऑप्शन अगर मुझे दे सको तो और भी बेटर होगा, थैंक यू सो मच। विजेंद्र, आपकी रिक्वेस्ट, मीना जी आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर मैं प्ले कर रहा हूँ। और ये रहे वो गाने जो आप लोग सुनना चाहते हैं।

0: सुनी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम तुम आप लोगों की रिक्वेस्ट जितनी प्ले कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। वैदेही काजल जी, अरविंद, राजेंद्र परमार, राकेश माथुर, प्रमोद चिंचोलकर, एंड दिस इज ये आपका नाम है मीना विनोदनी, और आप अंधेरी से हैं। एंड यस, मौसमी चटर्जी जी का गाना जो आपको सुनना है, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। मैं ज़रूर वो गाने प्ले करने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाहता हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को अब ये मूड जो है वो चेंज करते हैं हम थोड़ा, विल गो बैक इन टाइम। एक ऐसा गाना जिसको सुनने के बाद जावेद अख्तर साहब ने ऐसा कहा जाता है कि उस लिरिसिस्ट से उनकी कलम मांग ली थी। कौन सा है वो गाना और क्यों था ये, ऐसा हालात ऐसे क्यों थे, ऐसे मिजाज क्यों था, वो आप ये गाना सुनेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे ज़िंदगी की हकीकत को बयां करता हुआ ये सॉन्ग। सुनिए जल्द से जल्द।

वेलकम बैक, 7:50। मेरे यहाँ से जाने का वक्त हुआ है, फली आ चुके हैं स्टूडियो में और रहने वाले 8 बजे से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, ऑल द मैसेजेस कॉल्स के लिए और इन गानों को सुनकर फीडबैक देने के लिए। स्टे ट्यून, मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। चल रहे हैं स्टे ट्यून 107.1 FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

It's very clear our love is here to stay.

0: Frank Sinatra over there with Something Stupid, one of the biggest number ones of all time. Keep listening in to Akashwani's Rainbow Channel. It's time now for the news coming up at 8:45 in Hindi, followed by the news in English at 9 p.m. And we'll be back with more fabulous music at 9:15 right here on this radio station. Stay tuned for the news coming up right now in Hindi.
1: The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण

0: है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
4: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स रिसर्चर्स हेल्थ

0: केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वे स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज

होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर

सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को जो सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। और आपके साथ हूं मैं आज, आपका खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम रंगे महफिल का प्रदीप सलूजा जी वेलकम कर रहे हैं हमारा, और हम आपका कर रहे हैं जी इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। बने रहिएगा, अभी तो बहुत वक्त बाकी है जिसे यादगार बनाना है हमें। और भी जुड़े हमारे साथ, अंशु शर्मा मेरठ से जुड़ी हैं, और मोहम्मद सरफराज आलम जी जो कि हर दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से लिखते हैं कि तेरी याद का मौसम कभी ढलता ही नहीं, बिछड़ने का जख्म आज तक भरता ही नहीं, मुलाकात की उम्मीद लिए बैठे हैं हम मगर तेरा इंतजार कभी थमता ही नहीं, हर शाम तेरे नाम का दीपक है जलाया, दिल का ये अंधेरा मगर छटता ही नहीं, आंखों में तेरी याद के मंजर हैं आज भी और कोई ख्वाब दिल में ठहरता ही नहीं। लोग कहते हैं वक्त पर, लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, दिल इस दिलासे से मगर बहलता ही नहीं, तेरी राह में उम्र गुजर जाए तो गुजरे, ये इश्क किसी मोड़ पे रुकता ही नहीं, कहता है सरफराज यही इश्क की रवायत, सच्चा प्यार किसी हाल में मिटता ही नहीं। बस यही कहूंगा सरकार की वाह वाह कहने का भी दिल कर रहा है, और ये सोच रहा हूं कि इससे और लाजवाब शब्द मैं आपके लिए क्या कहूं, इतनी अच्छी और इतनी सच्ची दिल की बात आपने लिखी है। और बात भी यही है कि जब दिल की बात निकलती है तो शब्द अपने आप मिलने लगते हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और बनने लगते हैं जज्बात, जैसे एक छोटी सी लाइन है मगर देखिए कितनी गहरी है कि अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता, और कुछ अगर तारीफ करनी हो किसी खास शख्स की, किसी खास शख्स की, तो कहते हैं कि चांद रोज छत पर आकर इतराता था, चांद रोज छत पर आकर इतराता था, कल रात मैंने भी उसे तेरी तस्वीर दिखा दी,

0: रंगे महफिल का ये कारवां आगे भी जारी रहेगा, बस लौटता हूं छोटे से अंतराल के बाद।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें।

0: डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से रामलला के श्रृंगार।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। नमस्कार सर, वेरी टीरी गजल प्रोग्राम, बट आई विल नेवर फॉरगेट आकाश, यू आर ओनली माय प्योर लव एंड दिस वर्ल्ड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट मी, रिमेंबर मी ऑलवेज, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, लिविंग यू जस्ट आई एम नथिंग, हैव नो एग्जिस्टेंस, लव यू वेरी मच, वेरी वेरी थैंकफुल। टुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी, एमके रोड, मिंटो रोड, सेंट्रल दिल्ली से जज्बात आपके पहुंच गए हैं टुम्पा जी, आकाश तक पूरा यकीन है हमें। तेरी जुदाई का गम आज भी रुला जाता है, हर खामोश लम्हा तेरा नाम सुना जाता है। लोग कहते हैं मुस्कुरा लो सब ठीक हो जाएगा, दिल का दर्द मगर आंखों से छलक जाता है। मोहम्मद सरफराज आलम जी, जो कि हर दशना बाजार अररिया बिहार से अपने खूबसूरत अंदाज के साथ। और जैसा कि मैंने कहा कि बात जब दिल की हो अपने अपने अल्फाज होते हैं, लेकिन मिला जुला कर जब बनते हैं जज्बात, वो कहीं ना कहीं एक ही होते हैं। तो कहा है किसी ने कि अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे, क्यों ना करे याद तुझको, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे।

ये नसीब यादें अक्स संवारेगा, कोई खुशियां गम के आंचल पे उतरेगा, कोई इस फरेबी तमाम दुनिया में मैंने ये सोचा ही नहीं था कि अपना कह के भी पुकारेगा कोई, वो तंग खला परछाई भी खो जाए जहां, फलक की राह में उसको उभारेगा कोई, ये नसीब यादें अक्स संवारेगा कोई, खुशियां गम के आंचल पे उतरेगा कोई। प्रेमचंद प्रेमी जी जितरा धामपुर से शो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और आप हमारे साथ बने हुए रहे, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। माना कि साथ उम्र भर का नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत थे वो रास्ते

साथ चलते थे। न जाने कैसी है वो दुनिया जहां जाने के बाद कोई आता ही नहीं। मिसेस आर के हरियाणा से।

0: होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे में फिल्म में। और आज मैं हूँ आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। वो चंद लम्हे हमारी मुलाकातों के याद रखना, वो बीती सारी बातें हमेशा तुम अपने पास रखना। चाहे अब हम तुमसे उम्र भर मिलें या ना मिलें, तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगे, ये बात याद रखना। तुम मिले तो लगा जैसे सब मिल गया, खामोश दिल को कोई सुकून मिल गया। तुम्हारी बातों में एक अपनापन है जो हर दर्द को हल्का कर देता है। ये प्यार शब्दों में कहाँ बंध पाता है, ये तो बस महसूस किया जाता है।

तुम साथ हो तो बार राह आसान है, हर राह आसान है। तुम बिन सब कुछ अधूरा सा लगता है। नजर की नजर की नजर ना लगे है, अच्छा भी इस कदर ना लगे। तुझे देखा है इस नजर से, जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। अंश शर्मा हसीनापुर मेरठ यूपी से, बहुत ही बेहतरीन लाइन भेजी है आपने। एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, नाइस प्लेलिस्ट ऑफ गजल्स, योर्स बिग थैंक्स फॉर बेस्ट प्रोग्राम, हैव अ ग्रेट नाइट एंड फ्यूचर लाइफ। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, यही कहना चाहूंगा आपको भी, हमारे दिल से ये दुआ है जिंदगी हमेशा गुलजार रहे, खुशियों से आबाद रहे। मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैम कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से। रास्तों को मुसाफिर ढूंढता है, ना जाने क्यों हर शय आगोश में आने को दिल करता है, ना जाने क्यों। बद वक्त यूं ही तुम आया ना करो, हम खुद से ही क्यों बात कर लेते हैं, क्यों क्या बात है।

दोस्तों वक्त तकरीबन हो गया है कि मुझे आपसे विदा लेना पड़ेगा और जैसा कि मैंने कहा कि 8 तारीख को मुलाकात करेंगे। मैसेज मसाला मिक्स का प्रोग्राम रहेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 66 लाख का आंकड़ा पार कर गया। अमेरिका ने अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत भारत पर लगाने वाले अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, जिससे भारत कम शुल्क श्रेणियों में आया है। हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम 66 लाख का आंकड़ा पार कर गया। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पांचवा जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। ईरान ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के मुद्दों पर उसके अधिकारियों पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों की आलोचना की। अमेरिका ने अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 303 के तहत भारत पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, जिससे भारत का कम शुल्क श्रेणी में आया। हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जिन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने और आम जनता को परेशान करने के आरोप में एक आईपीएस अधिकारी सहित 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। ईरान ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के मुद्दे पर उसके अधिकारियों पर यूरोपीय

संघ द्वारा लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों की आलोचना की। अमेरिका ने अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत भारत पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 10% किया। हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेडियो चैनल है, आइए अब सुनते हैं भुलाए न बने

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार कल लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने में एक आईपीएस अधिकारी सहित 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। सिक्किम में नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने और मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने पर गहरी चिंता जताई। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में कई दिनों से लगी आग से 2.5 लाख से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा। हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री होंगे। श्री जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। सरकार कल लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं, अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने में एक आईपीएस अधिकारी सहित 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां जत्था माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की पवित्र यात्रा पूरी कर गंगटोक सुरक्षित लौटा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी कल से पुनः आरंभ हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में अधिकारियों द्वारा संचार सेवाएं लगातार ठप करने और मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने पर गहरी चिंता जताई। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में कई दिनों से लगी आग से 2.5 लाख से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने मस्कट में आयोजित FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 1-3 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारे कामा।

Tikastararira kukaru. Tikastararira kukaru.

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।